तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम सुरन मौलिक लोलिनी चारु गंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजम चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रकल्पं परेशं अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशं त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविंदम भजन्तीह लोके परेव नराणम् न तावत् सुखम् शांति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिपाशम् न जानामि योगम् जपम् नैव पूजाम् न तोऽहम् सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जरा जन्म दुःखौघ